जगत में झूठी देखी प्रीत, शरीरां दे रिश्ते शरीरां दे नाल जुड़े हुए हुंदे हन। अपने अपने रिश्तियां दे मुताबक

सच्चे दे दीवान कूड़ ना जाइए, सच्चे दे दरबार कूड़ जांदा ही नहीं, प्रवान हो ही नहीं सकता। आखो वाहिगुरु। सो हिरदा सुहेला जित हर गुण गाइए, हिरदा ओही सुखी है जिते हरी दे गुण गाए जांदे ने। जे बंदे लई बंदगी ही असीस है ते गुरु रूप शीशे ने प्रगट कीती, पर गुरु रूप शीशे ते शीशे विच अंतर भी है। शीशा सिर्फ दाग दसदा है, हटाउंदा नहीं, पर गुरु रूप शीशा सिर्फ कमियां दसदा ही नहीं, हटाउंदा भी है। आखो वाहिगुरु। गुरु रूप शीशा सिर्फ दाग दसदा नहीं, हटाउंदा भी है। गुरु रूप शीशा औगण दसदा ही नहीं, हटाउंदा भी है। गुरु शीशा सिर्फ समस्या दसदा नहीं, बल्कि समस्या का हल भी करदा, चाहे कश्मीरी पंडतों की समस्या क्यों ना हो। आखो वाहिगुरु। उसका हल दसदा है, उस समस्या का हल दसदा है, अपने आप नूं कुर्बानता कर दिंदा है, लेकिन सच नूं कूड़ पिछे कुर्बान नहीं होण दिंदा। आखो वाहिगुरु। गुरु शीशा दसदा है मनुखता की भलाई किवें है, मानवता का कल्याण किवें है, परमात्मा दी जो सारियां विच इक्को जी किवें है। आखो वाहिगुरु। गुरु शीशा दसदा है, गुरु शीशा दसदा है, एक पिता एक के हम बारक तू मेरा गुरहाई, गुरु शीशा दसदा है। आखो वाहिगुरु। गुरु शीशा दस रहा है, हे बंदे तू चंगी तरह वेखता सही, इस जगत विच जीउंदे तेरा मीत है कौन। आखो वाहिगुरु। मीत तो तू बड़े बनाए ने, पर देखता सही तेरा मीत कौन है इन्हां विचों किवें कहिंदे हन। आओ श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी का अमृत बचन इस शब्द राही पढ़िए, समझाउंदे हन कैसे देख तेरा मीत कौन है। आखो वाहिगुरु।

रात दिन कर पिया मजूरियां जितनिया मर्जी हन तू जिम्मेवारी दियां पंडा अपने सिर ते रख लै अंत वेले तेरी किसे ने

थोड़े देर समय विच राग दुर्गा गाने की कोशिश करांगे। इस विच पहली बंदिश सत मात्रे स्लो स्केल करांगे कीर्तन।

0: बरन सके महिमान जो तिहारी हम न सकत कर सिफत तुम्हारी आप ले हो तुम कथा सुधारी एक मन पुरख ते आए बरदाता संत सहार सदा बखियाता तास चरण ले हृदय बसावो तव परम गुरु नानक गुण गाओ तास चरण ले हृदय बसावो तव परम गुरु नानक गुण गावो सन्मान योग गुरु प्यारी साध संगत समूह माई पाई गज के फतेह बुलाओ वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। कुछ अजी कहिंदे हन जिस नूं किसे कम दा चज ना होवे तरीका ना होवे जीवन दा ढंग ना आउंदा होवे गुरु की मर्यादा विच चलण तों प्रतिकूल जिहड़ा इंसान है उस दा नाम कुचजी भाव खोटे अवगुणा नाल भरी होई ते शुभ गुणा तों खाली। मंज कहिंदे हन मैनू हे वाहिगुरु मैं तां मंज
1: मंज कुचजी अमावन डोसड़े
0: मैं कुचजी हां मैनू मत नहीं है मैनू अकल नहीं है जिवें भाई गुरदास जी लिखदे हन हौं अपराधी गुणे गार हौं बेमुख मंदा चोरी आर जो आर हौं पर घर जो हंदा। इस शब्द विच वी अवगुण गिणे हन कि इन्हां वीआं अवगुणा दे मैं संयुक्त हां हे प्रभु मेरे ते दयालता करो इन्हां अवगुणा तों मैनू बचा लवो। हौं अपराधी गुनहगार हौं बेमुख मंदा चोरी आर जो आर हौं पर घर जो हंदा निंदक दुष्ट हराम खोर ठग देश ठगंदा काम क्रोध मद लोभ मोह अहंकार करंदा विश्वास घाती आ किरत कण मैं को न रखंदा सिमर मुरीदा ढाडिया सतगुर बखसंदा। वी अवगुणा नाल मैं भरपूर हां पर तेरी शरण विच आया हां। संत शमेर सिंह जी ने गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का जीवन लिखिया होया पिछले दिनी पुस्तक छप गई है। उन्होंने अपनी वलों निम्रता सतगुरु जी के चरणों विच अपने अवगुणा की लिस्ट इस प्रकार रखी है। कामी अकुटल कूर कपटी अकिरत घणी कटु काल ही कलंकी कली काल के अधीन हूं। हे कलगीधर पिता मैं टेढ़े मन वाला हां मन विच मेरे कपट है कीती नू जानदा नहीं इस वास्ते अकिरत घण हां। कामी अकुटल कूर कपटी करित कणी कटु काल ही कलंकी कली काल के अधीन हूं। खोटो खाल खामी खूब खंडत खराब खरो खालक न जान्यो खल्यो खाल न प्रवीन हो गाफल गुसैल गम रूरी भरियो ज्ञानहीन गामी गण्यो अवगनी गुनानन में पीन हो। घर के न काम को आराम को न नाम कछु। राम मोहे तारो तब जानो नाथ दीन हो। हे वाहिगुरु, जे मैनू मेरे वर्गे पापी नू तारो तां समझा के तुसी गरीबा नू नवाजन वाले हो। गुरु नानक देव महाराज जी अर्ज कर रहे हन अकाल पुरख दे चरणा विच के मैं कुछ अजी हां। उत्तम भगते दा ही ढंग है, अपने ते गल लै के दूजियां नू सिखिया दिंदा है। किन्नी क कुछ अजी हां, अमावन डोसड़े मेरे विच डोसड़े मैने दोष गुनाह पाप, अमावन मैने म्योंदे नहीं हन। पाप बहुते गुनाह हन मेरे विच, जिन्हां गुनाहां नू मैं वर्णन करके नहीं दस सकदी। जे तासमंद सागर नीर भरिया ते ते औगुण हमारे।

0: अपने मालक दा आनंद मानन वास्ते जावां। हे वाहिगुरु, मेरे ते दयालता करो, मेरे ते ए कृपा करो, मैनू गुण बख्श दियो। मैं औगणा करके भरपूर हां, चाहुंदी हां अपने मालक नाल मेल करना। मालक दी प्रसन्नता तो बिना सुख किथे, गुरु दी खुशी तो बिना मनुख कुछ भी करदा रवे। जेड़ी गल गुरु नू पौंदी है ओ गल करांगे ता गुरु दी प्रसन्नता। दुनियावी प्रमाण है, जेड़ी गल घर वाला चाहुंदा, जे स्त्री ओ मन्ने ता ओ खुश हुंदा, नहीं ता नाराज। जेड़े जेड़े कर्मां च सतगुरु दी प्रसन्नता है, असी उन्हां नू जे त्याग दईए ते होर अपनी मर्जी दे कर्म करके गुरु दी प्रसन्नता लैणी चाहिए ता नहीं मिलेगी। हे सतगुरु, मेरे अंदर गुनाह हन, उन्हां गुनाहां दा सदका मैं किवें आप जी दा आनंद माण सकदी हां।
1: एक दू एक चढ़ंदियां,
0: नाले मैं जदों निगाह मार के वेखदी हां, एक तो एक चढ़दी तो चढ़दी तेरी सेवा विच। हे मालक, मैं एवें ही माण कर लिया सी, मैं अपने रूप दा अपने गुणा दा जे माण कर बवां ता तेनू कादा घाटा है। जीव रूपी स्त्रियां हन, परमात्मा दी भगती करन वाले वध तो वध हन, इसे करके साध संगत दी महिमा। हर दरख्त नूं, रुखां नूं, बूटियां नूं पानी देना पैंदा तां हरे भरे रहिंदे हन। कई रुख दरख्त नदियां दे किनारियां ते हुंदे हन, जड़ां विच पानी भरपूर है, पर मीह ना पवे पत्ते सड़न लग पैंदे हन। उपरों भी जल चाहिदा है। इसे तरह कई लोग अपने घर बह के ही बेअंत भजन कर लेंदे हन, पाठ कर लेंदे हन, माला फेर लेंदे हन, पर साध संगत विच नहीं आउंदे। थोड़े चिर दे बाद उन्हां नूं हंकार हो जांदा, मेरे वर्गा पजनीक कोई नहीं, मेरे वर्गा नतनेमी प्रेमी सिख कोई नहीं। जदों ओ साध संगत विच आउंदे ने, उन्हां दे मन दा माण दूर हो जांदा है कि जे मैं नित पंज बाणियां दा पाठ करदा पर गुरु दी हजूरी विच इत्थे तां सुखमणी साहिब पढ़न वाले बैठे हन, आसा जी दी वार दा रोज कीर्तन सुनन वाले, कथा सुनन वाले प्रेमी मौजूद हन, मैं 4 बजे उठ के तड़िया फिरदा, इत्थे तां 2 बजे उठण वाले भी सतसंगी हन, जड़े अमृत वेले उठ के सण के सी इशनान करके चौंकड़ा मार के बैठ के निरंकार दा पैरां बद्धी सिमरन करदे हन। साडे कोलों ते घंटा भी नाम नहीं जपिया जांदा। ਇਹ ਮਾਣ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿਚ ਆ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਬਰਖਾ ਦਾ ਜਲ ਪੱਤਿਆਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਕੁਝ ਮੈਲਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਕੁਝ ਬਾਹਰੋਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੰਗਤ ਬਣਾਈ ਹੈ।
1: ਕੌਣ ਜਾਣੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀਓ,
0: ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਤੱਕਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ। ਜੇ ਰਵਿਦਾਸ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਚੜ੍ਹਦਾ, ਕਬੀਰ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿਚ। ਜੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ, ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਤਸੰਗੀਆਂ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤੇ ਇਕ ਸਿੱਖ ਨਾਲੋਂ ਦੂਸਰਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿਚ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਮੇਰੀ ਕੀ ਮੂਲ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਭਾਵ ਮੇਰਾ ਕੌਣ ਨਾਮ ਜਾਣੇਗਾ, ਕੌਣ ਨਾ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਜਿਸ ਮੁਹੱਲੇ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਉਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਪਰ ਸੰਤ ਐਸੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ।